कार्यक्रम भजन दीपांजलि प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ।

0: गीता ज्ञान।
1: गीता ज्ञान संस्कृत भाषा रूपांतरण का साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार बिहान 8 बजे देखि 9 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलवार बिहान 7 बजे देखि 8 बजे सम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल FM अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा।

एक बार माँ सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में बैठी प्रभु श्री राम का स्मरण कर रही थी। तभी उनके दोनों पुत्र लव और कुश वहाँ आ पहुँचे। माँ, ये आप किसका ध्यान कर रही हैं? सीता जी बोली, मैं तुम्हारे पिता अपने स्वामी श्री राम का ध्यान करती हूँ। माँ, हमने अपने पिता श्री राम को कभी देखा नहीं, हम उनसे मिलने जाएंगे, दर्शन करेंगे। सीता जी बोली, वो तो बहुत दूर अवध में रहते हैं। माँ, हम तो जरूर जाएंगे। बच्चों ने जब हट की तो सीता माँ ने उन्हें आज्ञा दी और लव कुश श्री राम की खोज में निकल पड़े। और क्या गाते हैं,

मिलता उसी से पूछते, क्या आपने हमारे पिता श्री राम को देखा है? वो कहाँ रहते हैं? किसी ने कहा, वो यहाँ से बहुत दूर रहते हैं। आप आगे चलकर किसी से भी पूछ लेना। फिर दोनों भाई आगे बढ़ते हैं और कहते हैं,

चलते दोनों बालक थक कर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। तभी एक व्यक्ति वहां से निकला, दो मासूम बच्चों को देखकर बोला, बच्चों तुम दोनों कहां जाना चाहते हो? लवकुश बोले, हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से मिलने जा रहे हैं। क्या आपको पता है राम कहां मिलेंगे? फिर वो

प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको पद्मिनी अर्थात कमला एकादशी व्रत कथा और उसका महत्व बताने जा रहा हूँ। इस कथा के सुनने और पढ़ने से यश तथा वैभव प्राप्त कर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भक्तों, चलो चलते हैं कथा की ओर। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हुए संवाद चल रहा था। तभी युधिष्ठिर जी श्री कृष्णा जी से बोले, हे प्रभु, आपने सभी एकादशियों के बारे में बताया है, कृपया कर मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा को भी विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा करें। तभी युधिष्ठिर जी को लीलाधर समझाने लगते हैं और क्या कहते हैं, आइए कथा के माध्यम से आप सभी को बताते हैं।

0: प्रिय भक्त जनों, एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की
1: जय।
0: धर्मराज को गिरधर ने पद्मिनी एकादशी व्रत का महत्व बताया और बोले कि अब मैं आपको पद्मिनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे ध्यान पूर्वक सुने। त्रेता युग में एक है नामक राजा के वंश में एक कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मती राज्य में राज्य करता था। उस राजा के 1000 रानियां थीं। राजा अपनी सभी रानियों से अत्यधिक प्रेम करता था, किंतु उनमें से किसी से भी पुत्र प्राप्त नहीं हुआ जो राज्य को संभाल सके। राजा ने देव ऋषि मुनियों वैद्य आदि को दिखाया, किंतु असफल रहा। तो भक्तों, आइए आगे की कथा आप सभी को बताते हैं।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: गड़बड़ गड़बड़ पेट गड़बड़ जब पेट गड़बड़ सब तिर हड़बड़।
2: कब्जियत ग्यास अपच यी समस्या साना जस्ता लाग्छन् तर दिनभर को जीवनलाई अस्त व्यस्त बनाउँछन्। मैले धेरै उपाय अपनाए तर स्थायी राहत पाउन सकिन। अन्तत मैले रोजे एसआर ल्याक्स। प्राकृतिक तत्वको यो ल्याक्सेटिभ महसुससँग हुन्छ तरल। एसआर फार्मेसी वा आयुर्वेदिक स्टोरमा उपलब्ध छ।
3: सम्पर्क 98 08 30।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: वो मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई सु

0: मैं और मेरी तनहाई।
1: ये प्यास क्यों नहीं बुझती?
2: पता नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा।
3: कौन कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है?
2: थोड़ी सी मेरे लिए भी छोड़ो।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन,
2: उच्च स्तरीय 100% सुतीबाट निर्मित, पसिना सोच्ने हलुका टिकाउ र मुलायम इनरवेयर।
1: जेन्ट्स को लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट, लेडीज को लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्लोमर।
3: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल यू।

0: देख ले एक ट्रक आ रहा,
1: झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा।
0: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल,
1: सिग्नल को तोड़ दो बहुत बड़ी सिंबल।

0: तथा हीरा का आकर्षक डिजाइन उत्कृष्ट कलेक्शन सुन चांदी तथा हीरा जे किन्नोस जे जे ज्वेलर्स के किन्नोस
1: जे जे ज्वेलर्स बसंतपुर 104A

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरी।
1: पिक्सी ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर का उत्पादन,
2: उच्च स्तरीय 100% सूती बाट निर्मित, पसिना सोच्ने हलुका टिकाउ र मुलायम इनरवेयर।
1: जेन्स को लागि पिक्सी सुपर कुल भेस्ट ब्रिफ्स र पिक्सी गिलेक्स भेस्ट, लेडीज को लागि पिक्सी फेमिनेक्स क्यामिसोल र ब्लोमर।
3: पिक्सी फर द कम्फर्टेबल यू।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू सिस्टर टेलरिंग
2: रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
3: वो मलाई फ्रॉक
4: मलाई पनी सूट
5: वो
6: अनि मलाई

कारोबार को जानकारी दिन SMS अलर्ट सुविधा, निःशुल्क चेक बुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली बजार, गुर्जुको चौक, काठमाडौँ।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क करना सकूने।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरी।
1: Yeah, baby, yeah.

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: FM AJ 104.8 megahertz.

मैंने तारे ही गिने, सारी सारी रात भर मैंने तारे ही गिने, तेरी याद

6 बजे। अब FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज को संध्याकालीन प्रसारण प्रारंभ हुन्छ। FM अध्यात्म ज्योति प्रस्तुत गर्दछ संध्याकालीन सेवामा शुभ संध्या।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरि।
1: यहाँहरू अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: हृदय माता दी गोल्ड पैलेस शुक्लपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिंग
2: चीर परिचित यहाँ श्रेष्ठ टेलरिंग।
3: FM अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: झूले यहाँ सुंदर रुंचा एफएम अध्यात्म ज्योति ज्योति।
1: अध्यात्म ज्योति अध्यात्म ज्योति।

सभी को राधे राधे मित्रों। एक बार की बात है, राधा रानी जी अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी, तभी अपने प्रीतम की बात करते हुए उनकी सुंदरता का वर्णन कर रही थी। बातों बातों में कुछ देर बाद राधा रानी के प्रीतम सांवरिया श्याम सलोने की चर्चा होने लगती है, तो सभी सहेलियां श्याम काले को लेकर राधा जी को चढ़ाती हैं और आनंद लेने लगती हैं। तो प्रस्तुत है राधा जी और उनकी सहेलियों के बीच की नोकझोंक।

सभी सहेलियां मिलकर राधा जी को चिढ़ा रही थी कि वहां से गुजरते हुए नटखट नंद गोपाल कन्हैया लाल भी इस नोक झोंक को सुनकर एक पेड़ की ओट लेकर खड़े हो जाते हैं और प्रतीक्षा करने लगते हैं कि देखें राधा जी अपनी सहेलियों को क्या जवाब देती।

राधा जी का उत्तर सुनकर सभी सहेलियां एक पल के लिए खामोश हो जाती और अपना अपना सर हिलाकर राधा के सुर में सुर मिलाने लगती। पेड़ की ओट में छुपे मुरलीधर मुरारी भी राधा के जवाब से मुस्कुराने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि देखें आगे क्या होता है। तभी एक सहेली के मन में शंका उभरती है और वो अपनी शंका प्रकट करने के लिए कहने लगती है,

मित्रों, अपनी सखियों की बात सुनकर राधा जरा भी विचलित नहीं हुई, बल्कि बारी बारी सभी सखियों को देखकर हल्के से मुस्कुराने लगी। राधा जी को मुस्कुराता हुआ देखकर पेड़ की ओट में छुपे भगवान नंदलाल जी के मुखमंडल के भाव ही बदल गए। राधा जी के जवाब की उत्सुकता मन में बढ़ गई और वो सोचने लगे, देखें नवल किशोरी जी आगे क्या कहती है।

साथियों, राधिका रानी का सुंदर और अतुलनीय जवाब सुनकर उस सहेली का चेहरा काला नहीं बल्कि बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। सभी सहेलियां भी राधा जी के जवाब से सहमत हो जाती हैं। और उधर पेड़ की आड़ में भगवान कृष्ण भी मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। मगर उन सहेलियों में एक बहुत गोरी चिट्टी सहेली भी है जिसे अपने गोरेपन पर बड़ा घमंड है। वो राधिका प्यारी से कहने लगती है,

अपनी सहेली की बात सुनकर राधा को थोड़ा सा बुरा तो लगता है, मगर वो अपने आप को संभालते हुए मुस्कुराने लगती है। पेड़ के पीछे छुपे नंद गोपाल अपनी प्रिया राधिके की मनोदशा समझ जाते हैं, मगर पेड़ के पीछे छुपे रहकर श्री राधा के जवाब की प्रतीक्षा करने लगते हैं। इधर राधा रानी जी अपनी गोरी सहेली की शंका दूर करने के लिए कहने लगती है।